0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702 V23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिना तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स ले। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला

सो श्री रामचंद्र भगवान श्री विचित्र वीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे मारा मंत्र जपे विनियोगा अद कर्ण्यास ओम राम अमुष्टाभ्याम ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः ओम रईम अनामिकाभ्याम नमः ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः।

ॐ ह्रीं कवचाय हुम् ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वसुत ॐ ह्राः अस्त्राय पट तथ ध्यानम् वामेकरे वैलवहं महन्तं शैलं परिशृङ्करमालयाख्यम् दधानमाख्यामाद सुवर्णभरणम् भजीज्वलत्कुण्डलमाञ्जनीयम् ॐ नमो भगवते विचित्रवीरहरमते प्रलयकारानर प्रभाज्वलत्कृतापवज्रदेहाय अञ्जनीगर्भसम्भूताय प्रकरविक्रमवीरदैत्य दानवयक्षराक्षस ग्रहबन्धनाय भूतग्रह प्रेतग्रह पिशाचग्रह शाकिनीग्रह डाकिनीग्रह काकिनीग्रह कामिनीग्रह ब्रह्मग्रह ब्रह्मराक्षसग्रह चोरग्रह बन्धनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयम् प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम् कथय कथय व्याप्रमुखम् बन्धय बन्धय सर्वमुखम् बन्धय बन्धय राजमुखम् बन्धय बन्धय सभामुखम् बन्धय बन्धय शत्रुमुखम् बन्धय बन्धय सर्वमुखम् बन्धय बन्धय लङ्का दशाद भञ्जन सर्वजनम् मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून्मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मि कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्राः फट् श्रीविचित्रवीरहनुमते मम सर्वशत्रून् भस्मि कुरु कुरु हर हर हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारं जपित्वा सर्वशत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्रीविचित्रवीरहनुमन्माला।

0: यहाँ से आपको ठाकुर चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिडोली तक का सबका सान मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400।
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और आपके लिए वीकेंड का मौसम बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद रखती हूँ कि आपने सभी ने अपने फैमिली के साथ उसका पूरा फायदा उठाया होगा, गार्डनिंग की होगी। थोड़ा गार्डनिंग करने में भी आप जानते हो बड़ा ही रिलैक्सिंग है, पानी देना, और फिर आपके जब फूल लगने शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है कि आपने पौधे लगाए थे तो अभी फूल निकलने लगे हैं, तो आपकी जो गार्डन होता है उसमें आपको बहुत अच्छा। अब अगर आपने अपने घर में आपने अगर अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर जो है बढ़िया लेके आना है, टीवी फादर्स डे आने वाला है, टीवी आपको बढ़िया चाहिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर और बढ़िया बारबेक्यूज, अब बड़े डिजिटल आ गए हैं, बहुत एडवांस्ड और किचन की गैजेट्स एडवांस आपको खरीद के देनी है, गिफ्ट देना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और अपने स्पेशल देखिए और फिर अपना ऑर्डर बुक करिए 905-709-0045। और अब आपने फादर्स डे के लिए सोने के चेन्स लेने हैं, सोने की ब्रेसलेट्स लेनी है, सोने की बार्स लेनी है, और डायमंड अप टू 70% ऑफ चाहिए, तो आपको अल मदीना ज्वेलर जाना होगा। अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए मॉल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, तो अल मदीना ज्वेलर्स .com पे जाइए। शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे के लिए ब्राइडल सेट्स आपको चाहिए, डिजिटल गहने चाहिए, तो अल मदीना ज्वेलर्स में लेटेस्ट डिजाइन आपको मिलेंगे। तो और जानकारी के लिए आप 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पर आप कॉल कर सकते हो। तो अब आपके लिए बढ़िया सा गीत तो सुनाएंगे। पहले आपको बता दें कि अगर आपने मूव होना है तो मूव आपके लिए HK मूवर्स कनाडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। अपना ट्रक बुक करना है तो आप उनको कॉल 416-524-404, तो आप HK मूव करिए। आपको किसी का भी आपको कलिजन का काम करवाना है तो लंदन में गोर रोड में आपको आपने अगर आप किसी किस्म की भी आपको कलिजन का काम करवाना है लंदन के आसपास के इलाके में तो आपको जाना होगा मास्टर कलिजन डिपो। तो मास्टर कलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, और जानकारी के लिए आप mastercollisiondepot.com पर जा सकते हो और पूरी जानकारी ले सकते हो। तो अब आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। तो अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो आपके लिए ट्रक रिपेयर, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को कॉल कीजिए 905-625-0055, 905-625-0055। तो नेक्स्ट

गाना बड़ा मजेदार लगाया था, तो वो गाना पता नहीं किधर चला गया, तो वो गाना ढूंढ है ना, वो सॉन्ग

0: जैसे मैं तेरी आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नहगा, आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे।
1: क्यों किशोर, आप तो कुछ यूं कहते हैं

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये जो पुराने गाने हैं इनका अपना ही मजा है। आप मेरे से सहमत, बिल्कुल सहमत होंगे कि वाक्य ही ऐसा ही है। तो जब भी आप सुनना चाहते हो गाने को, उम्मीद रखती हूँ कि जो गाने मैं लगा रही हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे।
1: सिर नहीं सक कर पा रहे, मक्खी बेसन पिस्ता बरसी।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਔਰ ਜਸਟ $5 ਹਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ ਜੋ G26 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165 ਤੇ 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कैंसल सर में। समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, वहाँ पे आपको एकदम ताजा सारा कुछ सामान मिलता है क्योंकि उनकी जो टर्नओवर जो है ना बहुत है। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया फादर्स डे का गिफ्ट लेके देना चाहते हो, टीवी लेके देना चाहते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, जहाँ किचन गैजेट्स या फिर बारबेक्यू आउटडोर फर्नीचर, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, उनकी फादर्स डे स्पेशल्स का फायदा उठाइए। और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और अपनी ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 उनकी दो लोकेशन है आपके लिए। इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्स में है। तो 905-799-0045, 905-799-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। और अब आपने मूव होना है तो HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अगर आपने मूव होना है अभी ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4165-24-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने पोल्यूशन का काम करवाना है तो आपके लिए मास्टर कलीजन डिपो अब लंदन में लोकेटेड है गोर रोड पे। तो आप मास्टर कलीजन डिपो .com पर जा सकते हो और फिर आप उनको कॉल कर सकते हो। अगर आपने किसी तरह का भी कलीजन का काम करवाना हो वो तो आप मास्टर कलीजन डिपो .com पर जाइए और उनकी और जानकारी ले सकते हो। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको किसी किस्म का भी आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है तो आप टैक्स भरने के लिए आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिएगा। गुरप्रीत रोडे आपके लिए बहुत बढ़िया सर्विसेज देते हैं। तो 416-302-8835 तो मास्टर कलीजन डिपो 1753 गोर रोड लंदन ओंटारियो में मौजूद है मास्टर कलीजन डिपो। तो आप वहाँ पे जाइए और अपना कोई भी कलीजन का काम करवाना है तो बहुत बढ़िया, बहुत सालों का तजर्बा है उनका, तो आप वहाँ पे जाइए और अपना कलीजन का काम करवा सकते हो। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आइए अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं।

तो लीजिए सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग, ये गाना क्यों आपको जरूर पसंद आएगी, ये है आई मिलन की बेला का गाना। कोशिश करते हैं बातचीत कम करें, आपको मनोरंजन।

का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सुवरदा भला, हैव ए वंडरफुल वीक एंड स्टे सेफ। का जो गेम्स हो रही हैं तो गोरा फतेही ने तो कमाल कर डाली, उसने ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया तो ब्यूटीफुल।

0: की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की, यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA। चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर। विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर। 9057900560 स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट, ब्रैम्पटन। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
1: HK Movers,
0: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
1: For service with a smile, give us a call.
0: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
1: 416-524-6704.
0: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
2: Long distance moving specialist,
0: HK Movers.
3: HK Movers.
4: Oh, ha, bhai. अब बड़ी हाईवे ते डोर भोरी होई खड़ी है, की गल
5: आ? एक्सीडेंट हो गया कार दा, टो ट्रक ने फोन कर लगी आ।
4: ओ टो ट्रक छड्ड, मैं सीधा करदा स्काईडोम ऑटो एंड बॉडी सेंटर वाले नु, नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउन जाना उते।
5: आहो, मैं सुनया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनी ने डील कर दिया, नाल ही हुन मेरी कार दा मिशन टेस्ट कर दो, नए टायर पवा दियो, उधरों ब्यूटी पार्लर जाना, उधरों कार दा पंगा। आ छेती करो, स्काईडोम वाले नु फोन करो, 905-874-9878।
4: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते कार स्काईडोम तो सोने ते सुहागे वाली गल हुंदी जे।
6: जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम पंजाबी रंग दे विच अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई तुसी अज ही संपर्क कर सकदे हो चमकौर सिंह नाल, 416-662-1313, 416-662-1313।
7: ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸੌਂਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਟਾ ਸਵਾਲ ਸਕਾਰਬਰੋ ਤੋਂ ਮੌਸੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਸੇਫ, ਇਫ ਯੂ ਡਰਿੰਕ ਡੋਂਟ ਡਰਾਈਵ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ

निरपाव हुए पंगो पगवान, साध संगत मिलकी नो दान, शरण परे तब अंतर जामी, नानक लौट पगरी प्रभ स्वामी। गौरी महला पंचम, राम पिता प्रभु मेरे, मह निर्गुण सगुण तेरे रहा, पंच बिखाती एक गरीबा, राख राखन हारे, खेत कर है हर बहुत संताप है, आयो शरण तुहारे। कर कर हारियो अनेक पौ पाती, छोटे कथ नाही, एक बात सुनता की ओटा, साध संग मिट जाही। कर कृपा सब मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया, संति मन दियो मोह निरपौ, गुर का सब कमाया। जीत ले ओए महाविखाती, सहज सुहेली बानी, कहो नानक मन भया परदासा।

सुख संपत राज राज ले हो भाई मेरे को कृपया जय अरदास जो मांगो सोई सोई पाओ अपने खसल भरोसा।

जंघे मे पातु मातांडो गुल्फो पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वज्र सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

पाते तस्य वृत्ति कुले जाता प्रसन्ना कुलेश्वरी कुलदेवेस्तोत्रमिदम्।

श्रीवीर हनुमान दैवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे नारा मंत्र जपे विनियोगा अथ करण्यास ओम राम अमुष्टाभ्याम ओम रूम मध्यमाभ्याम नमः ओम रईम अनामिकाभ्याम नमः।

ॐ ह्रीं कवचाय हुं ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वसुः ॐ ह्राः अस्त्राय पटु तत ध्यानम् स्वामेकरे वैरवहं महन्तं शैलं परिशृङ्करमालयाख्यम् दधानमाख्यामाद सुवर्णभरणम् भजे ज्वलत्कुन्दलमाञ्जनीयम् ॐ नमो भगवते विचित्रवीर हरमते प्रलयकालानर प्रभाज्वलत्कृतापवस्त्रदेहाय अञ्जनी गर्भसम्भूताय प्रकर विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बंधनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह डाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम कथय कथय व्याप्रमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भञ्जन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून् मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मी कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्राः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारंध विद्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमान बाला।

चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सबका सान मेलेनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400। आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और आपके लिए वीकेंड का मौसम बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद रखती हूँ कि आपने सभी ने अपने फैमिली के साथ उसका पूरा फायदा उठाया होगा, गार्डनिंग की होगी। थोड़ा गार्डनिंग करने में भी आप जानते हो बड़ा ही रिलैक्सिंग है, पानी देना, और फिर आपके जब फूल लगने शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है कि आपने पौधे लगाए थे तो अभी फूल निकलने लगे हैं, तो आपकी जो गार्डन होता है उसमें आपको बहुत अच्छा। अब अगर आपने अपने घर में आपने अगर अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर जो है बढ़िया लेके आना है, टीवी, फादर्स डे आने वाला है, टीवी आपको बढ़िया चाहिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर और बढ़िया बारबेक्यूज और बड़े डिजिटल आ गए हैं, बहुत एडवांस्ड, और किचन की गैजेट एडवांस आपको खरीद के देनी है, गिफ्ट देना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और अपने स्पेशल देखिए और फिर अपना ऑर्डर बुक करिए 905-799-9045। और अब आपने फादर्स डे के लिए सोने के चेन्स लेने हैं, सोने की ब्रेसलेट्स लेनी है, सोने की बार्स लेनी है, और डायमंड अप टू 70% ऑफ चाहिए, तो आपको अल मदीना ज्वेलर्स जाना होगा। अल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए मॉर्टर में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, तो अल मदीना ज्वेलर्स .com पे जाइए। शादी, एनिवर्सरी, बर्थडे के लिए ब्राइडल सेट्स आपको चाहिए, डिजिटल गहने चाहिए, तो अल मदीना ज्वेलर्स में लेटेस्ट डिजाइन आपको मिलेंगे। तो और जानकारी के लिए आप 905-673-0100 पर कॉल कीजिए, 905-673-0100 पर आप कॉल कर सकते हो। तो अब आपके लिए बढ़िया सा गीत तो सुनाएंगे। पहले आपको बता दें कि अगर आपने मूव होना है तो मूव आपके लिए HK मूवर्स कनाडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं। तो और जानकारी के लिए आप आप आप उनको कॉल कर सकते हैं। अपना ट्रक बुक करना है तो आप उनको कॉल 416-524-404, तो आप HK मूव करिए। आपको किसी उनका भी आपको कोलिजन का काम करवाना है तो लंदन में गोर रोड पे आपको आपने अगर आप किसी किस्म के भी आपको कोलिजन का काम करवाना है लंदन के आसपास के इलाके में तो आपको जाना होगा मास्टर कोलिजन डिपो। तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, और जानकारी के लिए आप mastercollisiondepot.com पर जा सकते हो और पूरी जानकारी ले सकते हो। तो अब आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा गीत सुनाते हैं। तो अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो आपके लिए ट्रक रिपेयर बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को कॉल कीजिए 905-625-0055 905-625-0055। तो

मैंने जो गाना बड़ा मजेदार लगाया था तो वो गाना पता नहीं किधर चला गया, तो वो गाना है ना वो सॉन्ग आजकल।

0: जैसे मैं तेरी आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नहगा, आसमानों से कोई शौक सितारा टूटे।
1: आप

0: की सब फरमाइशें एक भी हमसे न डाली जाएगी। आ पड़ा है आशिकी से वास्ता, अब तबीयत क्या संभाली जाएगी।
1: क्या तू कहूँ,

हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये जो पुराने गाने हैं इनका अपना ही मजा है। आप मेरे से सहमत, बिल्कुल सहमत होंगे कि वाकई ही ऐसा ही है। तो जब भी आप सुनना चाहते हो गाने को, उम्मीद रखती हूँ कि जो गाने मैं लगा रही हूँ आपको पसंद आ रहे होंगे।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ, ਪਿਸਤਾ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਫੋਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਊਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ G26 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟਾਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कैंसिल सर में। समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री, वहाँ पे आपको एकदम ताजा सारा कुछ सामान मिलता है क्योंकि उनकी जो टर्नओवर जो है ना बहुत है। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया फादर्स डे का गिफ्ट लेके देना चाहते हो, टीवी लेके देना चाहते हो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, या किचन गैजेट्स, या फिर बारबेक्यू आउटडोर फर्नीचर, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, उनकी फादर्स डे स्पेशल का फायदा उठाइए। और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 उनकी दो लोकेशन है आपके लिए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। तो 905-799-0045, 905-799-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। और अब आपने मूव होना है तो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अगर आपने मूव होना है अभी ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4164-6704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने कोलिशन का काम करवाना है तो आपके लिए मास्टर कोलिशन डिपो अब लंदन में लोकेटेड है गोर रोड पे, तो आप mastercollisiondepot.com पर जा सकते हो और फिर आप उनको कॉल कर सकते हो। अगर आपने किसी तरह का भी कोलिशन का काम करवाना हो वो तो आप mastercollisiondepot.com पर जाइए और उनकी और जानकारी ले सकते हो। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको किसी किस्म का भी आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है तो आप टैक्स भरने के लिए आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिएगा। गुरप्रीत रोडे आपके लिए बहुत बढ़िया सर्विसेज देते हैं। तो 416-302-8833। तो मास्टर कोलिशन डिपो 1753 गोर रोड लंदन ओंटारियो में मौजूद है, मास्टर कोलिशन डिपो। तो आप वहां पे जाइए और अपना कोई भी कोलिशन का काम करवाना है तो बहुत बढ़िया, बहुत सालों का तजुर्बा है उनका, तो आप वहां पे जाइए और अपना कोलिशन का काम करवा सकते हो। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आइए अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाते हैं।

तो लीजिए सुनिए ये बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग, ये सुनते हो आपको जरूर पसंद आएगी। ये है आई मिलन की बेला का गाना। कोशिश करते हैं बाकी काम करें आपको।

का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक राम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। हैव ए वंडरफुल वीक एंड स्टे सेफ। का जो गेम्स हो रही हैं तो गोरा फतेही ने तो कमाल कर डाली। उसने ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म किया तो ब्यूटीफुल।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सचा पातशाह सिर सांदे जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह सजन सचा पातशाह सिर सांदे।

सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभ, चिंता लाहे हमारी। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभ, चिंता लाहे हमारी। रहाउ अवर न सूजन दूजी ठाहर, हार परियो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेख छूट है, हम निर्गुण लिहो उबारी। साद बख सिंद सदा मेहरबान, सब ना दे अदारी। नानक दास संत पाछ परियो, राख लिहो एह बारी। साद बख सिंद सदा मेहरबान,

राख लेहो एह बारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। टोडी महला पांजवा सतगुर आयो शरण तुहारी मिल सुख नाम हर सोभा

जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सचे पात शाह मल जन्म जन्म दी कटी।

जिस पास बैठिया सोहियन सब नांदा विसाहु सज्जन सच्चा पातशाहु सिर सहांदे जिस पास बैठिया सोहियन

सुख नाम हर सोबन चिंता लाहे हमारी सतगुर आयो शरण तुहारी सुख नाम हर सोबन चिंता लाहे हमारी रहाओ सतगुर आयो शरण तुहारी सुख नाम हर सोबन चिंता

लेख छोड़ अलिख छूट है, हम निर्गुण लिहो उबारी। साद बखसिंद सदा मिहरबान, सब ना दे अदारी। नानक दास संत पाछ परियो, राख लिहो इही बारी।

नानक दास संत पाछ परियो राख लिहो एह बारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi se anu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दे हो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: करते हैं, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, गवर्नमेंट फीस पे करती है कॉलेज की, एंड देन आपको रहने खाने के लिए फंडिंग देती है जो सीधा आपके खाते में आती है गवर्नमेंट से, मेरे खाते में नहीं आती। 30,000 to 100,000 की ये फंडिंग होती है, जिसमें से हाफ पैसा इज नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स ग्रांट्स ग्रांट्स। अभी बस 1 अगस्त का टाइम रह गया है, 48 days रह गए हैं, 22 जुलाई को लास्ट बैच है, तो 38 days रह गए हैं। सॉरी, अगर आपने अभी भी एनरोल नहीं करा, आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। और इसमें लाइक डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगते हैं, नोटिस ऑफ असेसमेंट, अगर आप मैरिड है तो लाइक मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट। फंडिंग डिपेंड करती है, अगर आपकी इनकम कम है, जितनी कम है उतना ज्यादा बेनिफिट है, जितना आपका फैमिली साइज ज्यादा है, आप मैरिड है, आपके किड्स है, आपको बहुत ज्यादा फायदा है, तो आप लाइक इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। लाइक इसमें कुछ कैच नहीं है, मीठी बातें हम करते नहीं है जी। ऑन एयर भी ये फीस है, ऑफ एयर भी ये फीस है। कितनी फीस है? $199 and $499 रेस्पेक्टिवली। कुछ कोर्सेज में 199 है जो है, और लाइक जो इजी है, जो बहुत ही इजी है, जिसमें टीचर ही नहीं है, आप खुद सेल्फ स्टडी करके आगे करते हैं प्रोग्रेस, उस पर 499 फीस है। और काम होने के बाद आपने अपनी ईमानदारी से देनी होती, क्यों? फंडिंग मेरे अकाउंट में आती है? नहीं, आपके अकाउंट में सीधा आती है, तो मतलब ईमानदारी आपकी चेक हो रही है, हमारी चेक नहीं हो रही। आपका फायदा हाथी जितना है, हमारा फायदा चीटी जितना है। अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, कोई कैच नहीं है। 7 years में बिजनेस में है, हजारों को हेल्प कर चुके हैं, प्रॉपर ऑफिस है, टिम हॉर्टन में नहीं मिलते, 1,000 square feet का ऑफिस है, 6 बंदे काम कर रहे हैं, और लाइक कोई कैच नहीं है इसके अंदर। नाम हमारा, अगर कोई कैच होता तो नाम हमारा ऑनर होता टोनी, पूरा नाम फराज नागपाल है, यूनिक ग्लोबल एडवाइजरी। कॉल करें, ऑफिस है, नंबर नोट करें आप हमारा, 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175। जब गवर्नमेंट $30 billion यूक्रेन को दे देती है, मतलब $30,000 million, हमें लगता है ठीक है, जब गवर्नमेंट एजुकेशन पे स्पेंड कर रही है अपने सिटीजन के लिए, तभी हमें लगता है कुछ कैच होगा। देयर इज नो कैच इन इट। नंबर नोट करें, फंडिंग हासिल करें, फंडिंग हासिल करें, ग्रांट्स हासिल करें, 30,000 to 100,000 की। नंबर 437-264-3175, 437-264-3175।
1: ਇਹ ਸੀ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਜੋ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਕੈਚ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਟੂ ਕਾਲ 437-264-3175, 437-264-3175, 434-2345-75। थैंक यू जी।

0: हां जी हरमन जी।
1: अहे हाले तई कोई फर्क नहीं पिया।
0: फर्क जे पै गया दिलां विच नी फिर तू रोवेंगी।
1: मैं क्यों रोऊंगी?
0: ए फर्क नी पैना चाहिदा फिर के दे कपड़े धोवेंगी।
1: दिल दा कपड़ा ना की सबन।
0: मैं तो रंग दी गल करदा भी भाई चंगा साबण वरत्या करो। हाँ। माड़े साबण रंग उड़ जांदा।
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वाले वरतदा छोकरा मारका ओ नहीं वरतना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा जी, ये कपड़िया दे रंग उड़े दा ही नतीजा कि अज इदा दा हो गया।
0: हाँ जी
1: हाँ जी
0: हाँ जी।
1: चलो मैं तुहानू फिर अज एक गल सुनानी आ।
0: दसो।
1: कहंदे कि जेड़ियां बादल सरकार दियां नीतियां ना।
0: बादल सरकार दियां नीतियां पहला मैनू ये दसो भी है केड़ियां।
1: चलो जेड़ियां भी आ।
0: ना इदां थोड़ा हुंदा, जेड़ियां केड़ियां दा की मतलब है?
1: देखो उना ने
0: समझाओ ना पहला।
1: की समझावा
0: भाई? साडे पल्ले ता पाओ।
1: की
0: पाओ? केड़ियां नीतियां ने
1: उना ने जो क्या आया पहला वो गल ता सुन ला। तू
0: सुन लांगे पहला गल ता दसो भी नीति केड़ी है।
1: मेनू नहीं पता।
0: अच्छा
1: ਮੈਨੂੰ
0: ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ।
1: ਕਿਉਂ?
0: ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ।
1: ਅੱਛਾ,
0: ਨਲਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨੀ, ਨਾਲੇ ਨਲਕੇ ਪਟਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ।
1: ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਲਿਸਟ ਚ।
0: ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਫੇਸਣਾ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਣਾ ਜੀ।

0: रब जी मेरा बिजनेस नहीं चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख लेने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
1: मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? देव तात्रे नू कॉल कर, रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला। भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल, फोन कर 416-677-0609 416-677-0609।
0: मेनू याद आ गया।
2: शुक्र है तू कोई बदाम बदूम खाया कर।
0: की भला
2: की
0: ए होई ही भी एक ना साडी लंडी मज भी हुंदी।
2: ले लो
0: की होया।
2: मैं कंगणा दी गल कर रही।
0: तू कंगणा दी गल कदों गल करनी? कंगण पा ला तू, ले ले।
2: ओहो तू ही तां शुरू होया सी भी ओ कंगणा जड़ी रणौत वाली।
0: आहो ओहो फिल्म वाली।
2: हां
0: ओदी गल सुन ला।
2: सुना।
0: ओदा नाम मैं अखबार च पढ़िया, कहिंदी मैनू ना जेड़ा फिल्म दे विच हुंदा कैमरे वाला, जेड़ा लैडा वाले हुंदे आ, जेड़ा इक्को टोपी पा के रौला नी पाउंदा, कट दो कट दो वड दो वड दो।
2: ओ वड दो वड दो नी, ओ कट कहिंदा हुंदा, डायरेक्टर हुंदा ओ।
0: कट मैनू पता, अंग्रेजी स्कूल गए कट मी हुंदा कटना वडना।
2: हां मतलब ओ उन्ना सीन ओथे मतलब खत्म, ओनू कहिंदे कट। तू छड्ड ओ गल्लां, तू मैनू अगे गल दस।
0: ओ कहिंदी वी मैनू ना बहुत वधिया लगदा ओ।
2: हैं?
0: हाँ कहनी जरा टेक्निकल हुंदा ना काम, टेक्निकल।
2: ओ टेक्निकल हुंदा?
0: टेक्निकल
2: टेक्निकल
0: टेक।
2: अच्छा तुहाडा टेक्निकल हुंदा जो भी हुंदा, तू मेनू गल सुना।
0: कहनी भी ओ ना मेनू बहुत ही नजारे वाला लगदा, कहनी बहुत नजारा आउंदा ओदे च।
2: आए हाय
0: पर मेनू ए नहीं सुन लगी
2: की
0: ओदे वाल जिवें खड़े जे हुंदे जिवें करंटिया लगदा हुंदा। कहदे ऐ तां नहीं मतलब लाइटमैन नूं कहंदी आ वीर बन के बत्ती नूं हत्थ ला लैंदे। हां जी
2: तू पींदा खांदा तां नहीं?
0: मैं जी पीना भी है, मैं खाना भी है जी।
2: की
0: पीना? मैं पानी है जी, चाय है जी, दूध है जी, जूस है जी, लस्सी है जी, और जेड़ी जी पीने वाली मिल जाए।
2: तू सवेरे की पी के आया मेनू ए दस।
0: सवेरे तां जी मैं मतलब जी पानी पीता जी, लस्सी पीती, चाह पीती, दूध पीता जी।
2: तेरा टेढ़ा टोया?
0: नहीं टाइम टाइम ना पीता जी, आया थोड़ा भी मतलब एदा थोड़ा।
2: मैं के शायद कट्ठा ही कहंदा होणा।
0: नाले तोड़े वाली चीज नहीं पींदे जी, ओदा तूनू आदत है। मैं तां कई बार गया भी कुड़ियां नूं चंगी नहीं लगदी, तू ना पिया कर।
2: केड़ी चीज?
0: ओही जेड़ी तू पीनी है।
2: मैं केड़ी पीनी है?
0: असी कद दसीए भाई?
2: दस दे दस दे
0: भाई। कोल्ड काफी पींदी है, इहदी चंगी नहीं हैगी।
2: क्यों नहीं चंगी? इन्नी गुड हुंदी है।
0: काफी गुड हुंदी है, साडे पिंड जिन्ने व्याह हुंदे ओदे तत्ती करके दिंदे आ काफी। जे ठंडी दे देना, पिछले मेरे व्याह सी भूआ दे मुंडे दा, ओदे ठंडी कॉफी दे दी, मेरे फफड़े गलों फड़ लिया कॉफी वाले नूं।
2: पता की
0: कहिंदा साला सवेर दियां तारां ला के ढूं ढूं कराई जांदा, कॉफी मंगी हुण ठंडी दे दी।
2: पता की चक्कर आ? तू ठंडी नहीं पींदा, ओदा ही नतीजा इह आ।
0: ते मैं फ्रिज रख के पी लिया कर, साडी नूं भावें तूं मैं कॉफी दी बर्फ जमा के पा लिया कर, विच सासी की लैणा देना।
2: ठीक आ, मैं तां तैनूं नतीजा दस्या आ।
0: नतीजा? तू मेरा नतीजा मेनू क्यों दसदा? नतीजा आपे मेरे घर दे जाके स्कूलों पुछ लैणगे। जदों मेरा नतीजा आउंदा हुंदा सी ना, फिर दो दिन मैं नहीं घरे आउंदा हुंदा सी।
2: क्यों?
0: फिर छत्रां दा डर हुंदा सी ना।
2: अच्छा चल मेरी गल नहीं सुननी तू?
0: तेरी गल क्यों सुननु, तू गड्डे ते लद्दी आ।
2: हुण सुनावां कि ना
0: गाउणा?
2: नहीं
0: हां
2: गल्लां।
0: ते गाउणा कौण सुनाऊं फिर?
2: ओ गाउणा ला दिंदे, पहले गल तां कर ला कोई मेरे नाल।
0: तू गल्लां ला दे नाले गाउणा सुना दे।
2: की
0: ऐ नहीं हुंदा?
2: एदां नहीं हुंदा। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੂਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗਾਣਾ ਲੱਗੂਗਾ।
0: ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਇਆ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ।
2: ਓ ਨਹੀਂ
0: ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਾਉਣੀ ਆ ਗੱਲ?
2: ਤਿੰਨ।
0: ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਆ ਤੂੰ?
2: ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਹੁਣ ਇੱਟ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੇਰੇ ਵਗਾਤੀ ਮਾਰਾਂ ਸਿਰ।
0: ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜੂ।
2: ਕਿਉਂ?
0: ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਗੇਟ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਸੁੱਟ ਦੋ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਵੱਜਦੀ ਆ।
2: ਆਏ ਹਾਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ।
0: ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਟ ਮਾਰੇਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜੂ।
2: ਹੈਲੋ।

0: हेलो किथे जो की कांडे
1: बाऊ मैं रैली ते ही कदों फ्री होके ओके
2: चल आ जा फिर
1: ओए सोना
0: मैं कड़ा हटना